प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमापार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना

0: 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. Earlier today, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. The central government notified the Employees Provident Fund EPF Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of the implementation of Code on Social Security 2020. Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains unchanged at 12% of wages each from the employee and employer, while the existing 10% rate will continue to apply to notified establishments by the central government. The new scheme came into effect on the 29th of last month with its publication in the Gazette. India has reiterated its firm stance that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism

Good on them. घर आंगन के आज की प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। शो की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के एक प्रेरणादायक विचार से। सर्वोच्च शिक्षा वो है जो केवल हमें जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त सृष्टि के साथ सामंजस्य में जीना भी सिखाती है। सच है शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है दोस्तों, बेहतर इंसान बनना भी है। साथ ही साथ आज हम विश्व खेल पत्रकार दिवस पर उन सभी खेल पत्रकारों को भी नमन करते हैं जो खिलाड़ियों के संघर्ष, उपलब्धियों और प्रेरणादायक जो कहानियां हैं उनको दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, अभी मैंने आज का सवाल तो बताया।

तो आज का सवाल है, खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं, यानी आपकी हॉबी क्या है। अपना जवाब हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म धरती से, और अब हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने उस दौर में इतिहास रचा जब महिलाओं के लिए घर की चौखट पार करना भी आसान नहीं था। यह कहानी है भारत की पहली महिला स्नातक डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की। कादम्बिनी गांगुली ने उस समय समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी जब लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पहुंचने की कल्पना भी उस समय बहुत कम महिलाएं कर सकती थी। साल 1883 में कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु ने इतिहास रचा। वो भारत की पहले महिला स्नातक बनी। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से प्राप्त की। उस समय ये उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी बल्कि भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा के नए युग का आरंभ था। उनकी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बेथुने कॉलेज से जुड़ा था जिसे भारत

का पहला महिला विश्वविद्यालय माना जाता था। लेकिन कादम्बिनी यही नहीं रोकी, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की और भारत की पहली महिला चिकित्सकों में अपना स्थान बनाया। जिस समय महिलाओं का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ही असाधारण माना जाता था, उस समय उन्होंने डॉक्टर बनकर समाज की सोच को बदल दिया। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली केवल एक डॉक्टर नहीं थी, बल्कि महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की सशक्त प्रतीक भी थी। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सीमाएं हमारे मन में होती है। कादम्बिनी गांगुली की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक साहसिक निर्णय से होती है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो केवल अपना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का रास्ता भी रोशन करती है।

अभी हम सुन रहे थे मिन मिनी को फिल्म रोजा से। और दोस्तों, कहते हैं किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उस ज्ञान संस्कृति

शुरुआत भारत में चतुरंग नामक खेल के रूप में लगभग छठी शताब्दी में हुई थी और यहीं से ये खेल पूरे विश्व तक पहुंचा। और अब बात करते हैं शून्य का। गणित की दुनिया में शून्य का महत्व इतना बड़ा है कि इसके बिना आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर और तकनीक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की एक और अनमोल देन है चिकित्सा विज्ञान। लगभग 2600 वर्ष पहले महान वैद्य सुश्रुत ने सैकड़ों शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल तकनीकों का भी उल्लेख किया था। और दोस्तों, आज हम सभी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैम्पू शब्द हिंदी के चंपी यानी सिर की मालिश से निकला है। भारत में सदियों पहले रीठा, शिकाकाई और आंवला जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बालों की सफाई और देखभाल की परंपरा रही है। बाद में यही विचार दुनिया भर में शैम्पू के रूप में लोकप्रिय हुआ। कपास और सूती वस्त्रों की कहानी भी कम रोचक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय 3100 ईसा पूर्व भारत दुनिया के उन शुरुआती क्षेत्रों में था जहां कपास की खेती और उससे वस्त्र बनाने की कला विकसित हुई। और डायमंड्स यानी हीरे, हजारों वर्षों तक भारत ही दुनिया में हीरों का एकमात्र ज्ञात स्रोत था। गोलकुंडा की खदानों से निकले अनेक प्रसिद्ध हीरों ने विश्व इतिहास में अलग पहचान बनाई। दुनिया के सबसे चर्चित हीरों में से एक कोहिनूर भी भारत की धरती से ही निकला था। इतना ही नहीं, योग, आयुर्वेद, दशमलव प्रणाली और ध्यान की परंपरा ऐसी अनेक अमूल्य धरोहरें भारत ने विश्व को दी है, जिनका प्रभाव आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में दिखाई देता है। तो अगली बार जब आप शतरंज की बिसात बिछाएं, शून्य का प्रयोग करें या शैम्पू से बाल धोएं, तो याद रखिएगा इन सब की जड़ें कहीं न कहीं भारत की समृद्ध विरासत से जुड़ी हुई है।

अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर को, फिल्म थी पूरब और पश्चिम। और हमारे पास कुछ मेल्स भी आए हैं। नवीन भाटिया जी लिखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं वो रेडियो एफएम गोल्ड भी सुनते हैं। और रश्मि कपूरिया, राधा वंदना, नीता, अंजू श्रृंखला, स्निग्धा, वासु, सारिका, ये सब उस खाली समय में पुराने गीतों पर आधारित डम्ब शरार खेलते हैं। सुदर्शन मुखी जी पुस्तक पढ़ते हैं और संगीत सुनते हैं। चरण दास जी भी पुस्तक पढ़ते हैं और संगीत सुनते हैं। और महेश अग्रवाल जी को हमारी जानकारी बहुत पसंद आई, और अभी अभी जो गाना सुन रहे थे वो भी बहुत पसंद आई। आप सबका मेल्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लोग खाली वक्त में क्या करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। आपके संदेश का रहेगा हमें इंतजार।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म परख से। और दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसी अद्भुत संरचना की जो धरती के भीतर उतरती है लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई मंदिर उल्टा खड़ा हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव की, जिसे भारत की सबसे भव्य और अनोखी बावड़ियों में से एक गिना जाता है। करीब 900 वर्ष पुरानी इस अद्भुत धरोहर का निर्माण 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने अपने राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाया था। वाव यानी सीढ़ीदार कुआं। लेकिन रानी की वाव सिर्फ पानी संग्रह करने का साधन नहीं थी बल्कि यह कला संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। रानी की वाव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी भव्य मंदिर को उल्टा धरती के भीतर उतार दिया गया हो। सामान्य मंदिरों के शिखर आकाश की ओर उठते हैं जबकि यहाँ सीढ़ियां और मंडप धरती की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं। यही कारण है कि इसे अक्सर उल्टा मंदिर भी कहा जाता है। 7 स्तरों वाली इस वाव की दीवारों पर 500 से अधिक प्रमुख और लगभग 1000 से भी अधिक छोटी बड़ी मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, अप्सराएं और भारतीय जीवन के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं। पत्थरों पर की गई यह बारीक नक्काशी आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। रानी की वाव की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह सम्मान न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत के गौरव का प्रतीक है। और इसी तस्वीर को भारत के 100 रुपए के नोट पर भी छापा गया है और यह बहुत कम स्मारकों को मिला ऐसा सम्मान है जो इसकी विशिष्टता को और भी बढ़ा देती है। सदियों तक सरस्वती नदी की बाढ़ और मिट्टी में दबे रहने के बावजूद यह अद्भुत संरचना सुरक्षित रही। जब इसे पुनः खोजा गया तब दुनिया ने भारतीय वास्तुकला के इस अनमोल रत्न को फिर से देखा। रानी की वाव हमें बताती है कि भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग केवल उपयोगिता तक सीमित नहीं थी बल्कि उसमें सौंदर्य, आध्यात्मिकता और विज्ञान का अद्भुत मेल भी था। यह ऐसी धरोहर है जिसे देखकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। तो अगली बार जब आप गुजरात जाएं तो रानी की वाव को अपनी यात्रा सूची में अवश्य शामिल करें क्योंकि यह केवल एक बावड़ी नहीं है बल्कि पत्थरों में लिखी भारत की गौरवशाली कहानी है, एक रानी और एक राजा की।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म जॉनी मेरा नाम से। और दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की दुनिया का सबसे कीमती खजाना क्या है, सोना, हीरा या पैसा? नहीं, आज का सबसे बड़ा खजाना है डेटा। आपकी तस्वीरें, बैंक अकाउंट, ईमेल, ऑफिस की फाइलें, यहाँ तक कि किसी देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी। और इस खजाने की रक्षा करता कौन है? एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जिस तरह पुराने समय में किलों की रक्षा के लिए सैनिक होते थे, उसी तरह आज की डिजिटल दुनिया के प्रहरी हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। इनका काम सिर्फ हैकर्स को रोकना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि किसी भी साइबर अटैक से पहले कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करना भी होता है। यानी ये डिजिटल जासूस भी हैं और सुरक्षा कवच भी। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में हर 39 सेकंड में एक साइबर अटैक होने की बात कही जाती है। ऐसे में हर बैंक, हॉस्पिटल्स, एयरलाइन, ई कॉमर्स कंपनी, सरकारी विभाग और यहां तक कि सोशल मीडिया कंपनीज को भी साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। अगर आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लॉजिकल थिंकिंग और पहेलियां सुलझाना पसंद है तो ये करियर आपके लिए है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह सिर्फ

भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए करियर विकल्पों में से एक है। अच्छे स्किल्स होने पर शानदार सैलरी, वर्क फ्रॉम होम के अवसर और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम करने का मौका भी मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में लोग आपको सिर्फ आईटी प्रोफेशनल नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया का रक्षक भी कहें, तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एक ऐसा करियर है जिस पर आज से ही नजर डालना शुरू कीजिए। याद रखिए, भविष्य उसी का है जो सिर्फ तकनीक का उपयोग करना नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा करना भी जानता है।

सोचिए, एक साधारण सी साड़ी जो ना बहुत महंगी थी, ना उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, ना किसी फैशन डिजाइनर की कल्पना थी, फिर भी वो आज वो साड़ी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में सहेज कर रखी गई। आखिर क्यों? क्योंकि उस साड़ी को पहना था डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ ने, इसरो के ऐतिहासिक मंगलयान मिशन के डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर ने, उसी दिन जब भारत का मंगलयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर मंगल की ओर बढ़ा था। डॉक्टर नंदिनी ने वही साड़ी पहनी थी। दुनिया उन्हें भारत की रॉकेट वुमन कहता है। तो जरा ठहर कर सोचिए, संग्रहालय में जगह उस साड़ी को नहीं मिली, बल्कि उस उपलब्धि को मिली, उस जुनून को मिली, उस स्त्री के साहस और प्रतिभा को मिली जिसने दुनिया को बता दिया कि सपनों का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को कभी कभी दूसरों की नजरों से आंकने लगती है, याद रखिए, आपकी त्वचा का रंग आपकी क्षमता तय नहीं करता, आपके कपड़े आपकी बुद्धिमत्ता की सीमा नहीं बताते, आपका शहर आपकी भाषा या आपका पारिवारिक परिवेश आपके भविष्य का फैसला नहीं करते हैं। आप जो पहनना चाहिए उसे गर्व से पहनिए, अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपनी पहचान को संजोइए, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने व्यक्तित्व को बनाइए, क्योंकि दुनिया अंततः ये याद नहीं रखती कि आपने क्या पहना था, दुनिया ये याद रखती है कि आपने क्या कर दिखाया। और हाँ, अगर कभी कोई आपको आपके पहनावे से आंकने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर बस इतना कह दीजिए कि मेरे कपड़े मेरी पसंद है, लेकिन मेरी पहचान मेरी मेहनत है। उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से तय होती है, और जब हौसले बुलंद हो तो आसमान भी सीमा नहीं रहता।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण को, फिल्म थी बड़े दिल वाले। और कभी कभी दुनिया हमें हमारे कपड़ों से परखने लगती है, कौन क्या पहनता है, कैसे दिखती है, उसका रंग कैसा है, वो किस पृष्ठभूमि से आता है। लेकिन सच तो ये है कि इंसान की असली पहचान उसके सपनों, उसकी मेहनत और उसके व्यक्तित्व से बनती है। जरा

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म घर से, और हम बात करते हैं अब हमारी परंपराओं के पीछे छिपे विज्ञान और संस्कृति की। तो केले के पत्ते पर खाते हुए आपने अक्सर देखा होगा, खुद भी खाया होगा और उसमें हम खाना पकाते भी हैं, लेकिन क्यों? भारत के कई राज्यों जैसे दक्षिण भारत, ओडिशा, बंगाल और पूर्वोत्तर में केले के पत्ते पर भोजन परोसने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन ये सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके पीछे कई रोचक कारण भी हैं। जब गर्म भोजन केले के पत्ते पर परोसा जाता है तो पत्ते की प्राकृतिक परत से हल्की सी सुगंध भोजन में घुल जाती है, जिससे स्वाद और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि इडली, पातोड़ी या मछली जैसी कई चीजें केले के पत्ते में लपेट कर पकाई जाती है। और केले के पत्तों में पॉलीफेनॉल नामक एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। माना जाता है कि गर्म भोजन के संपर्क में आने पर इनका कुछ अंश भोजन तक पहुंच जाता है। और महत्वपूर्ण बात, केले का पत्ता पूरी तरह से प्राकृतिक है, बायोडिग्रेडेबल है, न धोने की चिंता, न प्लास्टिक का कचरा, यानी पर्यावरण के प्रति भी एक जिम्मेदार कदम। और शायद यही हमारी भारतीय परंपराओं की खूबसूरती है, जहां स्वाद, स्वास्थ्य और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो अगली बार जब आपको केले के पत्ते पर भोजन करने का अवसर मिले तो उसे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव समझिए।

जी हाँ, हम भी चले। अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले को फिल्म पड़ोसन से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम को और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज

0: ज्ञान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, ये समय है उस कार्यक्रम का जिसका आपके साथ हमें भी बेसब्री से रहता है इंतजार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। लेकिन ऐसे कैसे, जब तक हम आपके साथ में कुछ बात ना कर लें, ऐसे कैसे आपको बता दें कि आज की फिल्म कौन सी है? जी हाँ, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो केवल अपने प्रदर्शन के समय ही नहीं बल्कि बरसों बाद भी उसी उत्साह के साथ याद की जाती हैं। उनके गीत सुनते ही जैसे समय पीछे लौटने लगता है और किरदार आंखों के सामने उतर आते हैं और सिनेमा घर की वही पुरानी सीटें, वही तालियां और वही रोमांच फिर से महसूस होने लगता है। आज की जो फिल्म है, आपको बस इतना बता दूं कि 1998 में ये फिल्म रिलीज हुई है और ये बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। देखिए, अब मैंने आपको हल्का सा हिंट तो दे दिया है और ना एक थीम म्यूजिक भी बजा रही हूँ। अगर आप बता दें कि आज की हमारी फिल्म कौन सी है तो क्या ही बात हो। हाँ, लेकिन देखते हैं कौन कौन हमें बता सकता है कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है। देखिए, ये जो फिल्म है ना, ये 20 नवंबर 1998 को प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक जोड़ी अब्बास मुस्तान ने। चलिए, बहुत सारी हिंट हो गई, अब मैं आपको एक गाना सुना ही देती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने पता कर लिया ना कौन सी फिल्म है।

जी हाँ, अब आप लोगों से कोई भी बात कभी छुपी रह सकती है भाई, इतने इंटेलिजेंट श्रोता है ना हमारे, कि इन्हें आप एक क्लू दीजिए और आप यकीन मानिए वो उसी वक्त से पकड़ लेंगे और आपके सामने हर पहेली का जवाब एकदम दे देंगे। हाँ दोस्तों, हमारी आज की फिल्म है 1998 में रिलीज हुई फिल्म सोल्जर, और हम इसी की बात आज इस पूरे समय आपके साथ करेंगे। तो हमारे बहुत से दोस्तों ने बिल्कुल सही हमें अपने जवाब भेज दिए हैं, तो उनके नाम मैं खैर आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, अभी आप ये जो गाना सुन रहे हैं ना, ये गाना गाया है अलका याग्निक के साथ कुमार शानू ने, और हम इस फिल्म के बारे में आपको हमने बताया था कि निर्देशन किया अब्बास मस्तान ने। इस फिल्म के निर्माता थे कुमार एस तौरानी और रमेश एस तौरानी, जबकि संगीत की जो जिम्मेदारी संभाली ना वो संभाली अनु मलिक ने और गीत लिखे समीर ने। फिल्म में जो मुख्य भूमिकाएं निभाई वो थी बॉबी देओल और प्रीति जिंटा, जबकि उनके साथ राखी, सुरेश ओबेरॉय, दिलीप ताहिल, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, शरद सक्सेना और आशीष विद्यार्थी जैसे अनुभवी कलाकार भी नजर आए। देखिए दोस्तों, हमेशा हम ना आपको कहानी भी बताते हैं इस

की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानी के अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपके साथ हमें ये जानकारियाँ साझा करनी चाहिए, है ना। तो आज हम ना पूरे समय ये कोशिश करेंगे कि इस फिल्म और इसमें जो पर्दे के सामने नजर आए वो कलाकार, और इसके अलावा पर्दे के पीछे जो कलाकार नजर आए उनके बारे में भी, कलाकार ही बोलेंगे हम उन्हें भी, क्योंकि अगर वो नहीं अपनी कला का जलवा हमें दिखाते तो हमारे सामने पर्दे की इतनी रूप भली दुनिया कभी हमारे सामने कभी आती ही नहीं, है ना। तो हम उनके बारे में आपके साथ में सारी बातें साझा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अब मैं क्यों ना बात करूं उन दोस्तों की जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो हमारे साथ हैं, देखिए बिल्कुल है सुनील पाठक जी, और ये लिख रहे हैं एक ही फिल्म के तहत फिल्म सोल्जर की गीत और कहानी सुन रहे हैं। ये फिल्म अपने जमाने की खूबसूरत फिल्म थी। बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप, और इसी खूबसूरती को आज हम अपने स्टूडियो में भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये है हमारे साथ मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार कुमकुम। फिर है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और इन्होंने भी बिल्कुल, देखिए मैं जिन जिन के भी नाम अभी आपके सामने ले रही हूँ ना हमारे दोस्तों की, इन सभी ने बिल्कुल सही हमें जानकारी दी है कि हम फिल्म सोल्जर की बात कर रहे हैं। फिर हैं ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। और लिख रही है सोनाली मैम जी, नमस्कार। ओहो देखिए अब यहाँ पर तो मैंने जहाँ बोला कि मैं सही लोगों के नाम ले रही हूँ ये तो आंसर मुझे गलत मिला है। देखिए बबलू साहू जी ये बाजीगर नहीं है, अभी मैंने आपको बता दिया ये सोल्जर है। और अरे वाह क्या बात है, अजीत भावसार जी ने तो मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पर बता दी। तो देखिए ना प्रमिला भावसार जी और अजीत भावसार जी, आप विरमगाम गुजरात से हमारे लिए लिख रहे हैं, आपने सब बता दिया कहाँ कहाँ शूटिंग हुई। देखिए मेरा ना थोड़ा सा आप काम आसान कर दे रहे हैं। तो देखिए वो सारी बातें मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी जो अजीत भावसार जी ने हमें लिखी है। और फिर ये कौन है, ये है जी ये नोहर राजस्थान से हैं, नरेंद्र सुथार, मनोज सुधार और हिमांशु सुथार। इन्होंने भी बिल्कुल सही लिखा है कि ये 1998 में रिलीज खूबसूरत फिल्म सोल्जर है। और अच्छा वो लिख रहे हैं कि मेरी शादी फरवरी 1999 में हुई थी, उससे उस समय सोल्जर फिल्म और उसके गीत बहुत सुपरहिट थे। तो अच्छा तो आपको देखिए वो पुराने दिन भी याद आ गए होंगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आज हमारी इस फिल्म के माध्यम से आप उन सारे दिनों को दोबारा जी लीजिए। और ये है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं, तो अभी हम बातें और भी करेंगे। इसके पहले ना इस फिल्म का एक और गाना सुनते हैं जो सुनकर के आप पक्का पक्का बल्ले बल्ले हो

दोस्तों आप सुन रहे हैं जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज में ये गीत। और देखिए हुआ ना मन मिजाज से बल्ले बल्ले। तो हम बात करें फिल्म सोल्जर की, और देखिए इस फिल्म में ना गाने बहुत सारे हैं, कम से कम तकरीबन 7 गाने हैं इसमें, और हम सब गाने आपके साथ में साझा करना चाहते हैं और आपकी बातें भी शुमार करना चाहते हैं। तो हमारे साथ देखिए कौन जुड़े हैं, हमारे साथ संजय ढिंगनिया है, ये है उत्तर उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपा ढिंगिया। और फिर हमारे साथ है सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, और ये है गांव हीरा वाली, फजिल का पंजाब से। फिर हमारे साथ है ये खान, हाँ गांव जाखोद राजस्थान से, चंबोदयाल खट्टक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खट्टक, और इन्हीं भी हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। और फिर ये है आदाब व नमस्कार बहन जी, यह है फ्रेंड्स रेडियो ग्रुप छोटी बलिया मुंबई करजत से, कौन है, अहमद भाई फुलवाली, नूर आयशा अहमद फुलवाली, इमरान अहमद फुलवाली, जूही इकबाल, सदफ आरजू, इकबाल अहमद फुलवाली और समस्त फुलवाली फैमिली, शुक्रिया। गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से है सज्जन जांगरा, राजपाला, कार्तिक व वेदांश, और इन्हें भी अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सोल्जर, शुक्रिया, फिल्म आपने सही पहचानी है। फिर ये है आज हमें फिल्म सोल्जर के गीत और की जानकारी दे रही है, ये है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बबलू और डब्लू। और फिर हमारे साथ है बबलू और डब्बू, माफ कीजिएगा, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, ये है छत्तीसगढ़ पलारी से। फिर है इसहाक मोहम्मद छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा और इनके परिवार के सभी सदस्य। फिर है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीचा, पूनम गगनीचा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, शुक्रिया। ये है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा परिवार। और ये कौन है, ये है राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, इंदिरा नगर भवरपुर से। और चलिए धर्मेंद्र शिपा जी का चिर परिचित ईमेल हमारे पास आ चुका है, पूजा परिवार है इनके साथ और कपिल शिपा जी भी है, शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपका नॉलेज से भरपूर, पूरे इंफॉर्मेटिव होता है आपका ईमेल। फिर ये है ग्राम नागरकोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, आपका मैं ले चुकी हूँ। जी आपने उसे करेक्ट कर दिया फिल्म को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे थे फिल्म सोल्जर की और उसकी बातों की। तो आइए अब मैं आपके साथ में जो गाना लेकर आ रही हूँ दूसरा, उसके पहले आपको बता दूं कि हिंदी सिनेमा के लिए बदलाव का समय था कौन सा, 90 का समय, एक और रोमांटिक फिल्मों का जादू था तो दूसरी ओर सस्पेंस और एक्शन पर आधारित फिल्में भी दर्शकों को आकर्षित कर रही थी। बाजीगर और खिलाड़ी जैसी सफल फिल्में देने के बाद अब्बास मस्तान एक बार फिर एक ऐसा विषय लेकर आए थे जिसमें प्रेम भी था, परिवार भी, विश्वासघात भी और रहस्य भी, यही संतुलन सोल्जर की सबसे बड़ी ताकत बना था। और हर मोड़ पर कहानी में एक नया सवाल खड़ा होता था और अंत तक दर्शक अनुमान लगाने पर मजबूर रहते थे कि आखिर इसकी एंडिंग क्या है। हाँ तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपका एंड बोल करके यहाँ पे मजाक किरकिरा नहीं करूंगी, आप जरूर ये फिल्म देखें। और इसकी सबसे दिलचस्प बात आपको पता क्या है कि इसकी प्रेरणा पंजाब की एक वास्तविक घटना से ली गई थी जिसे बाद में पटकथा का रूप दिया गया था। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं एक और दूसरे

कुमार सानू और हीमा सरदेसाई की आवाज में आप ये गाना सुन रहे थे, फिफ्थ सोल्जर। देखिए, दिल तो आप हमारा ले लेते हैं आपकी बातों से, और इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें आप लोग कैसे लिख देते हैं भाई, हमें तो विश्वास ही नहीं होता। और इतनी सारी जानकारी आपके पास में कहां से आती है, अच्छा बताइए तो। देखिए, ये हमारे सरकार सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और लिख रहे हैं कि इन्हें आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ हो, शुक्रिया। और इन्हें आज की फिल्म के बारे में पता चल गया है और सोल्जर की बात की है, शुक्रिया बहुत सारी, हमारी तरफ से भी आपको बधाई। फिर ये है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। और फिर है पहाड़गंज मुल्तानी थाना से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। और फिर है हमारे साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से पेश करता आदरणीय जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, शुक्रिया। तो ये हमें कौन प्यार भरा नमस्कार भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। फिर है भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, गोविंदा, अक्षय कुमार देवांगन। और ये है हमारे साथ हीरामणि वर्मा, दतरंगी भाटा पारा से। फिर है हमारे साथ पी एस नवकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, यह है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। फिर है मलकापुर से नारायण इंगली, सोपान तायरे, आशीष मुरियेकर, और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इसके लिए धन्यवाद। ये कौन है, ये है बसंत कुमार सिन्हा जी है। और ये देखिए, ये फिल्म ना एक ही फिल्म से है, तो इसमें मैं तो आपको सोल्जर के गाने सुनाऊंगी, तो आप कृपा करके आज फरमाइशी, ये फरमाइशी वाला प्रोग्राम नहीं है, तो आप फरमाइशी के लिए हमारा सुबह 10:10 पर प्रोग्राम होता है, उसमें आप जरूर अपनी फरमाइश भेजिएगा। और ये हमारे साथ और कौन है, ये है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ठिंगिया, नमन ठिंगिया, अपार ठिंगिया, शुक्रिया। और हम अभी बात कर रहे हैं अगेन सोल्जर की ही, तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में ना प्रीति जिंटा और बॉबी देओल दोनों मुख्य किरदारों में थे। बरसात और गुप्त जैसी फिल्मों के बाद सोल्जर ने बॉबी देओल को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर मजबूत सफलता दिलाई। और आज भी बॉबी देओल के यादगार किरदारों की बात होती है तो सोल्जर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और रही बात प्रीति जिंटा की, तो ये फिल्म उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। और आपको बता दें, सोल्जर उनकी पहली साइन की हुई फिल्म थी, लेकिन रिलीज पहले कौन सी हुई थी, मणिरत्नम की दिल से। इसके बावजूद मुख्य अभिनेत्री के रूप में सोल्जर ने उन्हें घर घर तक पहचान दिलाई। उनकी वो प्यारी सी मुस्कान, आत्मविश्वास और स्वाभाविक अभिनय ने दर्शकों

लोगों का दिल जीत लिया। इसी वर्ष जब दिल से और सोल्जर में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला था। और यही बात, देखिए किसी भी फिल्म का जो संगीत होता है वो उसकी आत्मा होती है ना, तो इस फिल्म की आत्मा थी अनु मलिक का संगीत। अनु मलिक ने इस फिल्म में रोमांस, लोक धुन और आधुनिक संगीत का एक ऐसा संगम रचा कि पूरा संगीत एल्बम वर्ष 1998 के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बमों में शामिल हुआ। गाने हैं जैसे सोल्जर सोल्जर, तेरा रंग बल्ले बल्ले, महफिल में बार बार, हम तो दिल चाहे तुम्हारा, और मेरे ख्वाबों में जो आए, जैसे गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस समय थे। गीतकार समीर ने बेहद सरल लेकिन दिल में उतर जाने वाले बोल लिखे, और कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम, जसविंदर नरूला और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाजों से इन गानों को यादगार बनाया।

सोनू निगम को आप सुन रहे हैं और फिल्म है सुलझे। आपको बस चलते चलते इतना बता दूं कि इस फिल्म की जो लोकेशन थी वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों ने सोल्जर को एक बहुत ही अलग सी एक सनिक खूबसूरती दी। और इस समय उस समय विदेशी लोकेशन पर इतनी व्यापक शूटिंग बहुत आम बात नहीं थी, तो बस दर्शकों को वो चीज बहुत अच्छी लगी। और 1998 में ये फिल्म बनी थी महज 8.5 करोड़ रुपए में, लेकिन इसने 39 करोड़ रुपए का कारोबार किया और ये उस समय की सफल फिल्मों में शामिल रही। पुरस्कारों की बात करें तो 44th जी हाँ फिल्म फेयर पुरस्कारों में सोल्जर को 5 श्रेणियों में नामांकन मिला। फिल्म ने 2 पुरस्कार अपने नाम किए, प्रीति जिंटा को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री और दिवंगत अकबर बख्शी को सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये था हमारे और आपके साथ आज हमने बात की फिल्म सोल्जर की। समय की कमी की वजह से बहुत से गाने आपको और भी नहीं सुना पाए, इसके लिए हम आपसे सच में माफी चाहेंगे। बस आपको बता दूं कि आपका साथ हमारे लिए हमेशा बहुत मायने रखता है, तो आपके नाम आपको बता देती हूँ। ये हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़सी और विनोद खड़सी। फिर है हमारे साथ कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत कुर किरत राहुल, और ये हैं गुरशब्द सिंह राहुल। फिर हमारे साथ है और भी हमारे दोस्त हैं, ये हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी तामुरिया, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, पोता है इनका मास्टर अल कबीर। और समदील नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राधव गुप्ता। फिर है एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की फिल्म सोल्जर में लीड वाली सफल फिल्म थी। जी हाँ, ये हमें लिख रहे हैं डीबी राणा नेहरू विहार से। और हमारे साथ हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और ये कौन है, बसंत कुमार सिन्हा जी लिख रहे हैं, श्रीमती रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी गुप्ता, और इन्हें भी ये दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया। फिर ये

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं माजिद अली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाई तकाइची से सालाना सरबरा बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तिसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फरहमी, अद्वियात और एआई के शोबे शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है, यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमरीका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। भारत और जापान ने आज दवासाजी, मसनूई जहानत, एआई, इक्तिसादियात और तवानाई की सिक्योरिटी समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान के वजीर आजम सनाई ताकाइची के साथ सालाना छोटी मीटिंग की। इस मौके पर फरीकैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और इश्तराक को मुस्तहकम करने पर बातचीत की और उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आज के दौर में भरोसा और एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत और जापान का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में होता है और दोनों मुल्क आजादाना और खुले भारत बहरुल काहिल को तरजीह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्क इक्तिसादी और तवानाई की सिक्योरिटी की अहमियत को बखूबी समझते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में साझेदारी भारत और जापान के दरमियान तआवुन का सबसे ज्यादा अहम सुतून होगा।
1: कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: इससे पहले आज जापान के वजीर आजम ताकाइची राष्ट्रपति भवन के अहाते में रस्मी इस्तकबाल दिया गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। जापान की वजीर आजम भारत के 3 रोजा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची हैं। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा है। वजारत खारजा ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को मजीद आगे ले जाने के सिलसिले में एक अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि भारत और जापान के ताल्लुकात मुसलसल आला सतह के सियासी राबतों पर मबनी हैं। अभी हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापान के वजीर आजम से बातचीत की थी। गुज़श्ता वर्ष नवंबर में जोहान्सबर्ग में G20 समिट के मौके पर भी दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी। बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी के बारे में एक जामे कन्वेंशन बनाने की भारत की तवील अरसे से चली आ रही तजवीज की अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में एक बार फिर हिमायत की गई है। दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा की नवी जायजा मीटिंग के दौरान भारत की तजवीज को 140 मुल्कों की हिमायत से मंजूर किया गया, जिसमें मेंबर मुल्कों पर जोर दिया गया है कि कन्वेंशन को कतई शक्ल देने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। कन्वेंशन की तजवीज भारत ने 30 साल पहले पेश की थी। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि कानूनी खदुखाल पर आलमी सतह पर इत्तफाक राय न होने की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशें कमजोर हुई हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटते वक्त दोहरा मयार नहीं अपनाया।

0: शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है। यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है और फीफा आलमी कप में अमरीका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news.

0: base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है।

0: आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मानसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान

0: बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन, पेश खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
1: इसे तराशा जाता है।
2: और
1: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी,
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
2: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरे

0: हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ,

0: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है।
1: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
0: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
0: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है
1: भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
4: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
5: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
5: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
5: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
5: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
6: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
5: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
6: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
7: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
8: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
6: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
6: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा।

0: और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज जय हो,
5: महाराज जय हो,
4: महाराज जय हो।
6: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं चलती।

तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है।

0: जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
6: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म।

0: से होता है।
1: शाबाश, समझ गए ना?
2: जी सर।
3: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
0: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
1: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
1: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
1: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
0: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
1: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
1: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
0: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
1: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
2: जी सर।
3: सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
1: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
0: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
1: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
1: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

में आदावर्स, ये आकाशवाणी है। सहपहर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशियात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामईन का खैर मकदम है। हमारी नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

0: मीडियम वेव्स 1,071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब से चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब सनाए तकाइची से सालाना सरबराह बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फराहमी, अद्वियात और AI के शोबे शामिल हैं। अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक

फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है और फीफा आलमी कप में अमेरिका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। भारत और जापान ने आज दवासाजी, मस्नूई जहानत एआई, इक्तसादियात और तवानाई की सिक्योरिटी समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची के साथ सालाना छोटी मीटिंग की। इस मौके पर फरीकैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तावन और इश्तराक को मुस्तहकम करने पर बातचीत की और उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल की। गुफ्तगू के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा और एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत और जापान का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में होता है और दोनों मुल्क आजादाना और खुले भारत बहरुल काहिल को तरजीह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्क इक्तसादी और तवानाई की सिक्योरिटी की अहमियत को बखूबी समझते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में साझेदारी भारत और जापान के दरमियान तआवुन का सबसे ज्यादा अहम सुतून होगा। बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी के बारे में एक जावे कन्वेंशन बनाने की भारत की तवील अरसे से चली आ रही तजवीज की अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली में एक बार फिर हिमायत की गई है। दहशतगर्दी से निमटने की हिकमत अमली से मुतालिक अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के नवें जायजा मीटिंग के दौरान भारत की तजवीज को 140 मुल्कों की हिमायत से मंजूर किया गया, जिसमें मेंबर मुल्कों पर जोर दिया गया है कि कन्वेंशन को कतई शक्ल देखने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। कन्वेंशन की तजवीज भारत ने 30 साल पहले पेश की थी। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि कानूनी खदोखाल पर आलमी सतह पर इत्तफाक राय न होने की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशें कमजोर हुई हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निमटते वक्त दोहरा मयार नहीं अपनाया जाना चाहिए। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले, रुकूम फराहम करने वाले और इसे शह देने वालों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अमरीका, इसराइल और अर्जेंटीना ने इस हिकमत अमली के खिलाफ वोट दिया। भारत ने इस सिलसिले में अपने पुख्ता मौकिफ को दोहराया है कि किसी भी सूरत हाल में दहशतगर्दी को जायज करार नहीं दिया जा सकता और इस लानत को खत्म करने के लिए उसने जामे आलमी कार्रवाई पर जोर दिया है। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक आलमी हिकमत अमली के नवें जायजे को अख्तियार किए जाने के दौरान अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करते हुए यूएन में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि दहशतगर्द दहशतगर्द होता है और इस बात पर जोर दिया कि झूठे जवाब या सियासी मसलहत पसंदी की आड़ में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें कमजोर नहीं हो सकती। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराए ने बताया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू होगी, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने ऐलान किया है कि भारत ने मुल्क की पहली निजी पॉइंट इन स्पेस की मंजूरी के साथ एक बड़ा संग मील हासिल किया है। ये पिंस सर्विस उंडावली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की सरगर्मियों से मुतालिक है। पिंस के तरीक़ेकार में सैटेलाइट पर मबनी नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हेलीकॉप्टर चलाने की और बिल्कुल सही जगह पर उतर सके। दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने आईएसआई के हिमायत याफ्ता बैन रियासती दहशतगर्दी और हथियारों

इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और डी डी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। मौजू है रेडियो सहाफत और उर्दू।

0: इंसानी जिंदगी में तरसील इबलाग को हमेशा बुनियादी अहमियत हासिल रही है। इंसान ने जब तहजीबी और समाजी जिंदगी का आगाज किया तो अपने ख्यालात, जज्बात और इत्तिलात दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत भी महसूस की और यही जरूरत आगे चलकर ज़राए इबलाग की सूरत में सामने आई। अखबारात, टेलीविज़न और दीगर मीडिया ज़राए ने मुआशरे में बड़ी तब्दीलियाँ पैदा की, लेकिन इन सब के दरमियान रेडियो आज भी अपनी मुनफरिद शनाख्त बरकरार रखे हुए है। रेडियो एक ऐसा मौसर जरिए इबलाग है जो कम वसाइल में भी मालूमात, तालीम और तफरीह आम लोगों तक पहुंचाता है। यही वजह है कि रेडियो ने शहरों से लेकर दूर दराज देहात तक आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई। हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात का बाकायदा आगाज 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के क़याम के साथ हुआ और आज रेडियो अपने 9 दहाइयों पर मुश्तमिल शानदार सफ़र की तकमील का जश्न मना रहा है। सामीन, ऑल इंडिया रेडियो ने उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज और फ़रोग़ में नहायत अहम किरदार अदा किया है। उर्दू के मुमताज़ अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों ने रेडियो के लिए ड्रामे, फीचर, मुज़ाकरे, टॉक्स और अदबी प्रोग्राम तैयार किए, जिन्होंने न सिर्फ सामीन की अदबी तरबियत की बल्कि उर्दू ज़बान को एक नई ताजगी और वसअत भी अता की। बहरहाल, ऑल इंडिया रेडियो ने उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग और इसके अदबी सरमाए को वसअत देने में जो नुमाया किरदार अदा किया है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज आकाशवाणी के स्टूडियो में एक खसूसी मुजाकरे का एहतमाम किया गया है। उन्वान है, रेडियो सहाफत और उर्दू। आज के इस खसूसी मुजाकरे में उर्दू सहाफत और अदब से वाबस्ता कई मुमताज़ और मारूफ शख्सियात शरीक हैं। उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब क़ुरबान अली, मारूफ कॉलम निगार और अदबी शख्सियत जनाब मासूम मुरादाबादी, मुमताज़ सहाफ़ी और मुबसिर जनाब शकील अख्तर और उर्दू सहाफत का मोतबर नाम जावेद रहमानी शामिल हैं। मुजाकरे की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर जनाब शकील अख्तर। तो आइए सुनते हैं आज का ये मुजाकरा।
1: सामीन आदाब, मैं हूँ शकील अख्तर। दोस्तों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज हिंदुस्तानी नशरियात अपनी उम्र के 90 साल मना रही है, यानी कि उसने 90 साल का सफ़र तय कर लिया है। इस सफ़र के दौरान उसने बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे। इस सफ़र के दौरान उसने हिंदुस्तान की तामीर तरक्की और बैन अलाक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने पेश किया है। आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तानी नशरियात में उर्दू ने और उर्दू ख़बरें ने किस तरह हमारे मुल्क को बनाया है, संवारा है, अवाम तक किस तरह लहजे को मैंने पहुंचाया है, या उन आवाज़ों को हम याद करेंगे जिनकी खनकती आवाज़, जिनका लब्बो लहजा हर घर में दस्तक देती थी और वक्त मुकर्रर पर हम उनकी ख़बरों को सुनना, उनको लहजे को जानना और उससे एक मयार कायम करने की कोशिश करना, यह हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा रहा है। आज इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मासूम मुरादाबादी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, जनाब क़ुरबान अली साहब BBC से वाबस्ता रहे एक मुद्दत तक, और जनाब जावेद रहमानी साहब सहाफ़ी हैं। इन तमाम लोगों के साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह उर्दू नशरियात में उर्दू ख़बरें शुरू हुई और उर्दू ख़बरें किस तरह आज तक सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँची है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ सामीन के, फील्डन से लेकर के अशरफ आबदी और तमीज़द्दीन तक जो उर्दू की ख़बरें रही हैं उनका अपना एक तसलसल है। आज़ादी से पहले ये खबरें हिंदुस्तानी के नाम पे ब्रॉडकास्ट होती थी, आज़ादी के बाद इन्हें उर्दू का स्वरूप, उर्दू की ज़बान दी गई और उर्दू में ये खबरें ब्रॉडकास्ट होने लगी। और अमूमन आपने ये सुना होगा कि ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। अब आप अशरफ आबदी से खबरें सुनिए। जी हाँ, मैं उसी खबर की बात कर रहा हूँ। आइए तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं और दावत देते हैं जनाब मासूम मुरादाबादी साहब को कि मासूम मुरादाबादी साहब, आप एक ज़माने में मुझे याद आता है कि रेडियो की आवाज़ जैसे रसाले से आप वाबस्ता रहे हैं, तो उस रसाले में जो चीज़ें छपती थी उसमें खबरें तो नहीं होती थी लेकिन पॉलिटिकल कमेंट्री होती थी और अदबी प्रोग्राम्स होते थे, ज़रा इसके बारे में कुछ हमें बताएं, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह इसकी शुरुआत हुई।
2: देखिए शकील साहब, मैंने अपना करियर ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू जदीदे आवाज़ से शुरू किया था 1982 में।
1: जी,
2: और आवाज़ जो 15 रोज़ा रिसाला था उर्दू का, ये मुल्क में बड़ा मकबूल रिसाला था उस ज़माने में, 50 पैसे उसकी कीमत होती थी।
1: जी,
2: और जो नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की मुख्तलिफ सर्विसेज से उर्दू की नशर होती थी वो उसमें शाये होती थी, चाहे वो तख्लीकी मजामीन हों, तहकीकी मजामीन हों,

0: लिसनर तो कोई भी हो सकता है, एक सड़क सड़क का आदमी भी लिसनर हो सकता है, तो उसकी रीच जो थी वो बहुत तेजी के साथ फैली। जैसे कुरबान भाई ने अभी जिक्र किया, ये बीबीसी से इतने अरसे तक वाबस्ता रहे हैं, तो जो बीबीसी को मकबूलियत हासिल हुई पूरी दुनिया पर वो छा गया। इसी तरह हिंदुस्तानी नशियात और खासतौर से उर्दू की जो नशियात थी वो इतनी तेजी के साथ फैली चारों तरफ, क्योंकि उस जमाने की जो जबान थी वो मिली जुली हिंदुस्तानी जबान थी, इसका हमने अभी जिक्र किया। लेकिन वो बाद में आज़ादी के बाद अलग अलग बुलेटिन हिंदी के और अलग अलग उर्दू के शुरू हुए।
1: जी
0: अब जब उसमें क्या हुआ, हिंदी वालों ने ये किया कि उसको संस्कृत से जोड़ दिया, इसी तरह उर्दू वालों ने किया कि अरबी और फारसी के मुश्किल अल्फाज उसमें इस्तेमाल करने लगे। जबकि रेडियो को आम फहम बनाने के लिए ज़रूरी था कि बिल्कुल आप आम आदमी की ज़बान में बात कीजिए।
1: बिल्कुल
0: और मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारा अपना तजुर्बा भी ये है कि जितनी आम फहम ज़बान आप लिखेंगे या बोलेंगे वो ज़्यादा दूर तक जाएगी।
1: बिल्कुल
0: और अगर आपने, हमें जब सहावत हम सीख रहे थे तो ये बताया गया कि आप अपनी काबिलियत मत झाड़िए, आप कितने पढ़े लिखे हैं ये मत साबित करने की कोशिश की, बल्कि आप एक बिल्कुल ले मैन की ज़बान में बात कीजिए।
1: दुरुस्त।
0: तो इस तरह से ज़बान ने तरक्की की, और फिर जैसे जितनी जितनी सहाफ़त, जैसे जैसे नशरियाती सहाफ़त का दौर आगे बढ़ा और उसमें तरक्की के बहुत सारे मराइल हैं, आज उसका बिल्कुल हुलिया बदल गया है। अब तो जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और तमाम
1: हाँ,
0: चीज़ें
1: मॉडर्न
0: हैं,
1: टेक्नोलॉजी।
0: मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने तो बिल्कुल उसका कंसेप्ट ही बदल दिया है। अब तो आपको एक, पहले तो घंटों मेहनत करनी पड़ती थी, अब तो सेकंड के सेकंड में आपको सब चीज़ें मालूम हो जाती हैं। तो आज जब हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं नशरियाती सहाफ़त की, तो उसने तरक्की की किन मराहिल को तय किया है और किन किन चीज़ों से होकर के वो यहाँ तक पहुँची है। एक ज़माने में जब हम खबरें सुनते थे ऑल इंडिया रेडियो की, तो उसमें देखिए एक लबो लहजे का बड़ा फ़र्क था।
1: जी
0: जो लोग खबरें पढ़ते थे उनकी, मतलब बहुत सारे लोग तो इसीलिए खबरें सुनते थे कि यार फलां आदमी का लहजा बड़ा शानदार है, उनको खबरों से ज़्यादा अच्छा लगता था।
1: लहजा।
0: हमारे एक अजीज़ थे मुरादाबाद में, मैंने ये देखा कि वो अखबार पढ़ते थे और रेडियो के अंदाज में। तो मैं सुबह को ये देखता था कि वो एक अलजमियत अखबार आता था वहाँ, तो वो एक होटल पे चाय पीने जाते थे, चाय वाला उनको फ्री चाय पिलाता था, क्योंकि 50 आदमी उनकी वजह से उसके पास चाय पीने आ जाते थे
1: खबरें सुनने के
0: कि
1: लिए।
0: मुक्तदा खान जो है वो खबरें इस वक्त शुरू हो रही
1: ये
0: हैं।
1: तो गोया रेडियो का काम कर रहे हैं वो।
0: तो मैंने सुना आपने बचपन में, मैं देरी 10-15 साल की उम्र थी, क्या गजब के अगर वो यहाँ आ जाते ऑल इंडिया रेडियो में तो बेहतरीन
1: ब्रॉडकास्टर
0: ब्रॉडकास्टर
1: होते।
0: होते और इसी अंदाज में वो तकरीर भी करते थे। तो रेडियो ने एक लबो लहजे को लोगों के तब्दील
1: कुछ
0: किया।
1: नाम याद है बचपन में कभी किसी की खबरें सुनी उर्दू की?
0: भाई बहुत सारे लोग, अब मैं एक, मुस्तफ़ा अली अकबर हुआ
1: जी,
0: करते थे,
1: मुस्तफा अली अकबर थे, जाहिद
0: और आपके, अब आप
1: अली खान की खबरें सुनी
0: जाहिद अली
1: होंगी,
0: खान थे, हाँ
1: अशरफ आबदी से खबरें सुनी होंगी
0: अशरफ
1: आपने,
0: आबदी, हाँ इन,
1: शमीम रिजवी से सुनी होंगी।
0: जी। तो जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जब मैंने मतलब 40-45 बरस पहले जब मैं आवाज़ में आया था, तो ये एक कहकशा थी रेडियो जो
1: जी
0: था, और इसमें जो उर्दू सर्विस का दफ्तर था और उर्दू मजलिस का, मतलब रेफर सरोज साहब
1: जी
0: उर्दू मजलिस का जब प्रोग्राम पेश करते थे, तो उनकी आवाज़ जो थी एक सिंबल बन गई थी।
1: तो आज के प्रोग्राम का मकसद ही है कि हम उर्दू न्यूज़ में से वाबस्ता लोगों को भी याद करें, और साथ ही साथ उन्होंने जो जबान के हवाले से हम तक एक रवायत को पहुंचाया है, हम उसे भी याद करें। कुर्बान अली साहब, आप जैसा ये बताना चाहेंगे हमें कि किस तरह रेडियो ने जबान के हवाले से अलग-अलग इलाके की कुछ न कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ लहजे होते हैं, तो क्या इन चीज़ों को एक में इंसानियत की तलाश रेडियो में होनी चाहिए, या हर इलाके अपने लबो लहजे के लिहाज से उर्दू में खबरें ब्रॉडकास्ट करें? बीबीसी के अपनी एक अपना एक लबो लहजा है और एक अपना सेटअप है कि किस तरह हमें कौन सी जबान बोलनी। जैसा कि अगर पंजाबी से रिलेटेड, पंजाबी के एरिया में अगर उर्दू का ब्रॉडकास्ट जा रहा है, जैसे बीबीसी जो भी मैंने सुना है और दूसरे रेडियो स्टेशन के, पानी खड़ा है। हालांकि हम दिल्ली वाले या लखनऊ वाले कभी पानी को खड़ा नहीं कह सकते, तो क्या इस तरह के इलाकाई असरात भी उर्दू न्यूज़ पर पड़े हैं?
2: जी आमतौर पे तो होता ये है कि चूंकि खबरों को बहुत ही सीरियसली लिया गया, कभी उसमें वहाँ इजाज़त नहीं दी गई कि किसी तरह की छेड़छाड़ जबान के साथ की जाए या किसी तरह का
1: कोई लिबर्टी
2: खिलवाड़,
1: नहीं ले सकते आप?
2: लिबर्टी नहीं ले सकते। तो आमतौर पे बहुत ही सीरियस अंदाज में, बहुत ही संजीदा तरीके से न्यूज़ रीडर या प्रोग्राम जो करंट अफेयर्स के होते थे वो उसमें करते थे। लेकिन उसके बावजूद देखिए, सिर्फ सहाफत वही नहीं है कि जो खबर और करंट अफेयर्स है,
1: जी
2: इसके अलावा और भी दूसरे कई तरह के प्रोग्राम होते हैं जो बहुत संजीदा में

0: मैसेज देते हैं या खबर देने का भी काम करते
1: कमेंट्री
0: हैं, कमेंट्री है। उसके अलावा उर्दू सर्विस के, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस का प्रोग्राम होता था तामील इरशाद,
1: जी
0: बड़ा मशहूर। और उसका एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, हमारे दोस्त थे महमूद हाशमी साहब, यहीं पर वो करते थे ये प्रोग्राम। और 1983 में इन्होंने लाइन सबमिट हुआ था, जियाउल हक साहब आए
1: उनका
0: और
1: इंटरव्यू किया था।
0: महमूद हाशमी साहब मिले उनसे विज्ञान भवन में, कहा कि मैं महमूद हाशमी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो तामील इरशाद वाले, यानी पाकिस्तान का सदर। और उसके पीछे, इस तारुफ के पीछे मकसद था कि उनसे इंटरव्यू लेना, जो कि इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा कि आप कल अगले दिन आ जाइए सुबह, और वो हुआ। उसी तरह से आवाज दे कहाँ है, एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम
1: ए जब्बार
0: उर्दू सर्विस का होता था। अब
1: जब्बार साहब
0: उसमें आप ये कहें कि चाहे वो अपने दोस्तों की बात होती थी, अपने वतन की बात होती थी, अपनी कल्चर की बात होती थी, लेकिन उसके जरिए से वो भी एक तरह की, मैं मानता हूँ, सहाफत थी, कि उसमें बहुत ही संजीदा गुफ्तगू होती थी। और उसमें चूंकि पार्टीशन हुआ था, लोग इधर से उधर गए थे, उधर से इधर आए थे, करोड़ों लोग, तो उन तक बातचीत पहुँचती थी। असल चीज़ क्या है, खबर का मकसद क्या है, कम्युनिकेट करना,
1: जी
0: गुफ्तगू करना।
1: जी
0: और वो जिस तरह से, जैसा मासूम भाई ने कहा, कि अगर आम फहम जबान में हो, अगर जो जबान आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सुर्खियां अभी शुरू में बताई,
1: जी
0: तो वो तो आम आदमी के सर से उड़ जाएंगी। और वो भी उस जमाने में रेडियो घर घर करता था, शॉर्ट वेव पे होता था, तो उसको सुनना भी एक मशक्कत करनी पड़ती थी, खास करके बीबीसी सुनने के लिए। तो उसमें अगर आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे कि जो बहुत सख्त हों या जिसके लिए डिक्शनरी देखनी पड़े, तो वो फिर वो ब्रॉडकास्ट जो है वो सिर्फ प्रोफेसर्स के लिए हो सकता है, पढ़े लिखे लोगों के लिए हो
1: नहीं,
0: सकता
1: मेरा
0: है।
1: सवाल ये था कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू न्यूज़ ब्रॉडकास्ट
0: जी
1: का दामन बहुत वसी है। अब मैं अगर बताऊं कि कहां कहां से ये ब्रॉडकास्ट होता था, तो शायद आपको बात समझ में आएगी। दिल्ली में हो रही है, इसके बाद एक मरकज़ लखनऊ है, लखनऊ के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हैदराबाद है। तो इन तमाम इलाकों से जो खबरें उर्दू की ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, तो कश्मीर में कुछ वोकैबुलरी अलग है,
0: जी यकीनन
1: है ना। हैदराबाद में ठप्पा घर, डाकघर को हम लिखते हैं, वहाँ लोग समझते हैं। तो इससे क्या उर्दू जबान में एक तरह की इंसानियत पैदा या कुछ हिंड्रेंस पैदा होती है?
0: मेरे ख्याल में नहीं, ये भी खूबी है। और देखिए, किसी भी जबान की खूबी है कि वो दूसरी जबानों को जम करे अपने आप में, जो कि हिंदी ने काफ़ी हद तक इसमें किया है। और इसलिए जो पिछले 90 साल का की एक तारीख है ऑल
1: जी
0: इंडिया रेडियो की, और ख़ास करके उर्दू सहाफत, उर्दू ब्रॉडकास्टिंग की, वो उसमें ये आपको लबो लहजा मिलेगा। हैदराबादी लबो लहजा भी मिलेगा, लखनवी लबो लहजा भी मिलेगा, कश्मीरी लबो लहजा भी मिलेगा, और दिल्ली वालों का भी मिलेगा। और दिल्ली की जो अपनी टकसाली जबान है, वो भी बहुत सारे प्रोग्रामों में सुनाई दी, जो कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भले ही ना हो,
1: जी
0: लेकिन वो एक तरह से एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं।
1: जी
0: और उनमें वो चीज़ें, वो जुमले, वो मुहावरे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो सुनने को मिल जाते।
1: तो अभी जिन खबरों की बात कर रहे थे, जिन लबो लहजे की बात कर रहे हैं, जिन तहजीबी कदरों के साथ खबरें पढ़ी जाती हैं, आइए कुछ नाम उनके बारे में जान लेते हैं, ताकि हमारे जहन में हमारे सुनने वालों को पता चले कि कैसे कैसे लोग थे। जैसे आज़ादी से पहले लाहौर रेडियो से मुस्तफ़ा अली हमदानी, सईदा बानो हिंदुस्तान से,
2: बहुत बड़ा
1: सईदा बानो हिंदुस्तान की एक ऐसी लेडी है जिन्होंने 13 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया रेडियो में ज्वाइनिंग की थी और इसकी खबर उस वक्त के हिंदू में छपी थी। अब सईदा बानो के हवाले से मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, और सिर्फ एक जुमला ये कहना चाहूँगा कि पूरे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग की तारीख में ये पहली खातून है जिनको ऑल इंडिया रेडियो ने अपॉइंट किया था।
0: जी
1: हम जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट में अगर ऑल इंडिया रेडियो में सिर्फ हम म्यूजिशियन को बाहर कर दें, जो खवातीन हमारे यहाँ म्यूजिक से दिलचस्पी रखते हैं, उनको अलग हटा दें, तो हमारे यहाँ खवातीन की, उर्दू जानने वालों की एक बड़ी तादाद मिलती है जिन्होंने खबरें भी पढ़ी हैं, जिन्होंने ड्रामे लिखे, ड्रामे प्रोड्यूस किए, फीचर्स बनाए। तो रेडियो ने किस तरह औरतों को एम्पावर किया है रेडियो न्यूज़ के हवाले से भी, इन्हें देखिए नाम तो सईदा बानो से लेकर रेहाना फरीदी, मदब्बरा उस्मानी, ये सब खवातीन थी जिन्होंने खबरें पढ़ी। इसके बाद एक नस्ल वो देखी मैंने जो यहाँ से खबरें पढ़ते हुए, उनमें जाहिद अली खां, मुस्तफ़ा अली अकबर का नाम आपने लिया, असद जाफरी से आप वाकिफ़ हैं, शमीम रिजवी थे, सलीम अख्तर थे, रेहाना फरीदी, मदब्बरा उस्मानी भी थी, तमीज़ुद्दीन साहब का नाम आपने लिया, शमीम अहमद, और एक अहम मरकज़ श्रीनगर होता था हमारा जहाँ से खबरें ब्रॉडकास्ट होती थी। ये नशरियात का ये अदारा 1948 में बना था। वहाँ कुलदीप राणा नाम के एक बहुत ही अच्छे उर्दू के

0: ब्रॉडकास्टर थे।
1: ब्रॉडकास्टर थे या खबरें पढ़ा करते थे। और खबरों के हवाले से सिर्फ एक बात और शेयर कर देना चाहती हूँ कि अवाइल दौर में हमारे यहाँ न्यूज़कास्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। बस हम हायर करते थे एक अनाउंसर, उससे कहते थे ये खबरें आप पढ़ दीजिए।
0: और यहाँ मैं आपको यह बताता चलूँ कि हमारे मुल्क के एक वजीर आजम हुए हैं जो बीबीसी में ब्रॉडकास्टर थे और ऑल इंडिया रेडियो में भी उन्होंने एक कैजुअल अनाउंसर के तौर पर भी काम किया है, इंदर कुमार गुजराल। और इंदर कुमार गुजराल साहब ने मुझे बताया कि उनका रेडियो से बड़ा ताल्लुक रहा। और दिलचस्प बात यह है कि वो वजीर आजम तो बहुत बाद में बने, उससे पहले वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर पहले हुए। और तो ये एक ऐसा सफर रहा है ब्रॉडकास्टर्स का कि उसमें कई बड़े नाम, बलराज साहनी, भीष्म साहनी, जो स्टेज के बहुत सारे लोग हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो और उसकी उर्दू सर्विसेज के साथ उनकी
1: वाबस्तगी रही है, खासतौर से ड्रामे से वाबस्तगी रही है। बस आखिर में एक दो सवाल के बाद अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि एक तमाम गुफ्तगू के बाद ये जहन में बात आ रही कि क्या उर्दू रेडियो ब्रॉडकास्ट आज के दौर में अपनी पहचान, अपनी शनाख्त बरकरार रख सकती है?
0: यकीनन, देखिए एक बड़ा अच्छा माजी रहा है जिसका हम जश्न भी मना रहे हैं। 90 साल का जो ये अरसा है, 10 साल बाद सेंचुरी हो जाएगी, मामूली चीज़ नहीं होती है। और उसको याद रखने वाले लोग आपको अभी भी मिलते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये, जैसा अभी रहमानी साहब ने कहा कि रेडियो को सुन करके, खास करके उर्दू जबान को सुन करके लोग अपना लबो लहजा दुरुस्त करते थे, तो ये सबसे बड़ा कारनामा है। और आज भी उर्दू का तो मामला ये है कि वो जहाँ भी बोली जाती है तो बहुत, जितनी शीरी जबान में है वो शायद दूसरी किसी और जबान में नहीं है।
1: अच्छा जी रहमानी साहब, इस सिलसिले में आपको क्या रेडियो ब्रॉडकास्ट, उर्दू न्यूज आज के दौर में, इस टेक्नोलॉजी में और इस बुहरानी दौर में अपनी शनाख्त को बरकरार रख पाएगी?
2: नहीं नहीं बिल्कुल, रेडियो सहाफत बिल्कुल रख पाएगी, और बल्कि मुझे लगता है कि अब बहुत मजबूती के साथ रखा जाएगा। उसकी वजह है कि हमें तकनीक का भी सहारा मिल जाता है, पहले तकनीक नहीं थे।
1: जी तकनीक से मुराद आप AI की बात
2: जी,
1: कर रहे हैं?
2: बिल्कुल AI की बात कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान तबका हमारा वो चाहता है कि इमीडिएट उसको
1: सब चीज़ें
2: मिल जाए।
1: तो इसी के साथ हम गुफ्तगू का ये सिलसिला खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, कि आप लोगों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की कि 90 साल के इस उर्दू नशरियात में उर्दू न्यूज़ ने किस तरह मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए यहाँ तक पहुँची है, और नए टेक्नोलॉजी को किस तरह हम आहंग करके अपने वजूद को बरकरार रखने और मौसर तरीके से आवाम तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू खबरें महज खबरें नहीं थीं, बल्कि एक तहजीबी अलामत, और उन खबरों के पढ़ने वालों की आवाज़ों ने न सिर्फ वाकया सुनाए बल्कि एक जबान, एक रवायत और एक तहजीब को जिंदा रखा है। हम इस बामानी मजाकरे के लिए और इसमें शिरकत करने के लिए जनाब मासूम मुरादाबादी साहब, जनाब कुर्बान अली साहब और जनाब जावेद रहमानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए और आकर के इस 90 साल की तारीख में उर्दू न्यूज़ के बददरीज तरक्की, उसके मराहल, उसके मसाइल पर गुफ्तगू की, और इससे हम एक नए दौर में दाखिल होंगे और इससे और बेहतर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने और उसको मौसम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम ये मुज़ाकरा खत्म करते हैं।
0: शकील साहब आपका बहुत शुक्रिया।
3: बहुत शुक्रिया। अंदाज़े नज़र, अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे थे, मौजू था रेडियो सहाफत और उर्दू। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्री डिश पर हमारी नशात जारी है। लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। आगाज मोहम्मद अजीज और एस जानकी की आवाजों में, फिल्म है आखिरी रास्ता। नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

खुदा गवाह फिल्म का ये दुकान आप सुन रहे थे अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। नगमा निगार थी अनिल बख्शी, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। और लीजिए सुनिए सौदागर फिल्म का नगमा मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाज़ों में।

आदमी खिलौना है। इस फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। मौसीकी नदीम शवन की थी। और लीजिए सुनिए मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ फिल्म बेलगाम का नगमा।

मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज़ों में अभी आप ये नगमा सुन रहे थे। फिल्म थी याद रखेगी दुनिया। फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से।

खुद गर्ज़ फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे नितिन मुकेश और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में, मौसीकी थी राजेश रोशन की। और इसे आप सुनिए अमृत फिल्म का नगमा मोहम्मद अजीज़ का गाया हुआ।

भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ।

जापान के दरमियान ताउन का सबसे ज्यादा अहम सुतून होगा। इससे पहले जापान के वजीर आजम राष्ट्रपति भवन के सब्जेदार पर बाकायदा इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। जापान के वजीर आजम भारत के 3 रोजा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची थी। वजीर आजम की हैसियत से ताकाइची पहली बार भारत के सरकारी दौरे पर आई हैं। बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी के बारे में एक जामे कन्वेंशन बनाने की भारत की तवील अरसे से चली आ रही तजवीज की अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में एक बार फिर हिमायत की गई है। दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा की नवी जायजा मीटिंग के दौरान भारत की तजवीज़ को 140 मुल्कों की हिमायत से मंजूर किया गया, जिसमें मेंबर मुल्कों पर जोर दिया गया है कि कन्वेंशन को कतई शक्ल देने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। कन्वेंशन की तजवीज़ भारत ने 30 साल पहले पेश की थी। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि कानूनी खदोखाल पर आलमी सतह पर इत्तफाक राय न होने की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशें कमज़ोर हुई हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटते वक्त दोहरा मयार नहीं अपनाया जाना चाहिए। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले, रकूम फराहम करने वाले और इसे शह देने वालों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। भारत ने इस सिलसिले में अपने पुख्ता मौकफ को दोहराया है कि किसी भी सूरत हाल में दहशतगर्दी को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता और इस लानत को ख़त्म करने के लिए उसने जामे आलमी कार्रवाई पर जोर दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक आलमी हिकमत अमली के नवे जायजे को अख्तियार किए जाने के दौरान अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए UN में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि दहशतगर्द होता है और इस बात पर जोर दिया कि झूठे जवाब या सियासी मसलहत पसंदी की आड़ में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें कमज़ोर नहीं हो सकती। शहरी हवाबाजी की वजारत ने ऐलान किया है कि भारत ने मुल्क की पहली निजी पॉइंट इन स्पेस पिंस की मंजूरी के साथ ही एक बड़ा संगमील हासिल कर लिया है। ये पिंस सर्विस उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की सरगर्मियों से मुतालिक है। पिंस के तरीक़ेकार में सैटेलाइट पर मबनी नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हेलीकॉप्टर चलाने की और बिल्कुल सही जगह पर उतर सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू होगी, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराये ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने ISI के हिमायत याफ्ता बैन रियासती दहशतगर्दी और हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ एक कार्रवाई में 4 मुलजिमों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा है कि ये लोग ISI के आकाश शहजाद भाट्टी और उसके साथियों की हिदायत पर कौमी राजधानी में दहशतगर्दाना कार्रवाई का मंसूबा बना रहे थे। कार्रवाई के दौरान 2 गैर मुल्की पिस्तौल, 9 कारतूस और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। वेनेजुएला के अवाम ने फील्ड अस्पताल में काम करने वाली भारत की मेडिकल टीम की सताइश की है। इस अस्पताल में वहां आने वाले शदीद जलजले से मुतासर अफराद का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। भारत ने मुतासरीन की मदद की गरज से ऑपरेशन एमस्टार्ट के तहत वहां ये फील्ड अस्पताल कायम किया है। वहां जून की 24 तारीख को 7.2 और 7.5 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था, जिससे मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। इसी दौरान वेनेजुएला के कौमी असम्बली के सदर जॉर्ज रोड्रीगेज ने बताया है कि मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,295 और जख्मियों की तादाद 11,267 हो गई है। 6,461 अफराद को बचाया गया है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक से मुतालिक कई तंजीमों ने खातून सरगर्म कारकुन की गिरफ्तारी की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान में खातून सरगर्म कारकुन को गिरफ्तार किया है। इंसानी हकूक से मुतालिक तंजीमों ने कहा है कि यह गिरफ्तारी पुरम कारकुनों के खिलाफ बढ़ती हुई कार्रवाई का एक हिस्सा है और इससे पाकिस्तानी फस्ता

0: मासूमियत का इजहार होता है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी शोबे ने इस खातून सरगर्म कारकुन को कैट जिले में उनके घर से गिरफ्तार किया, जिसका कोई कानूनी जवाब नहीं है। यूक्रेन में रूस के रात भर के हमलों के बाद कीफ में 13 अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए हैं। रूस के ड्रोन और मिसाइलों की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाए जाने के बाद ऐसा हुआ है। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि शहर भर के हिस्सों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फजाई हमलों से मुतालिक सायरन भी सुनाई दे रहे थे और कई शहरियों ने मेट्रो स्टेशन में पनाह ली। रूस के ये ड्रोन और मिसाइल हमले इस हफ्ते के शुरू में यूक्रेन के मास्को पर ड्रोन हमलों के बाद किए गए हैं। फीफा आलमी कप में नॉकआउट मरहले में एक्स्ट्रा टाइम के बाद शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बेल्जियम सेनेगल को 2-3 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। दूसरी जानिब मुआविन मेजबान अमरीका ने 2002 के बाद नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की। उसने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराया और प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब सनाई ताकाइची से सालाना सरबराह बातचीत की है। भारत और जापान ने कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फराहमी, अद्वियात और एआई के शोबे शामिल हैं। अक्वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। और फीफा आलमी कप में अमेरिका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फील्डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
2: सामिन, अभी तक आप हमारी नशरियात आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से समाप्त कर रहे थे। मीडियम 1584 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। अब से लेकर जब ठीक 10 बजे तक हमारी नशरियात अब मीडियम 684 किलोहर्ट्ज़ के अलावा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ सामिन, हमारे अगले ऐलान का भी इंतज़ार कीजिए। मीडियम वेव स्टॉचिंग नगबियाना 69 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव त्रुकियाना 69 किलोहर्ट्ज़, यंग FM रिया 66 मेगाहर्ट्ज़ दोना न्यूज़ ऑन AIR एबी कंगा छा आकाशवाणी करगिल ना जिनचियो दिने जक पुब्रेस पुत दोना जुलाई से निस आकाशवाणी करगिल कनंगा चि दिन छ चुपत पी प्रोमाटिक प्रोग्राम ने अंबु गा छिया यन दिशि तालेप सुत प्रोग्राम यन कंसर मा सुन से छिन मोन दोना का कफोनन सगा गा छि शिदान अस्सलाम वालेकुम وقت بوده رفیق تو سود غصون سوکس دنگ چی درینی دوای پروگرام صداق الله گزوق بید دی پروگرام پیرخ سی که انتسیان مزد رسام قرآنی تلاوت نا ترجمه الله بسم الله
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نسکت پسون فی شیطان غنی شیطینا خدای کنا فقرت سالت بسم الله الرحمن الرحیم تومت مهربان لیگی رحم چن خدای مین کنگا رخصت سب

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी,

0: 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanae Takaichi, in New Delhi this afternoon. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that investments have emerged as a key driver of India's strategic partnership with Japan and are expected to further strengthen bilateral ties. Addressing the Indo-Japan Strategic Dialogue on Shaping the Asian Century, organized by a private television channel, Mr. Goyal said, opportunities are opening up for India's skilled workforce, while the government's focus remains on ensuring equitable development for all under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
3: It's a partnership that has many dimensions. Trade also is an important element of this partnership, particularly given our complementary strength. What we get from Japan are largely technology-driven products. What we sell to Japan are also value-added products. We are not selling raw materials or intermediates. We're selling high-quality precision engineered material, auto component, electronic component. So, in effect, this particular relationship has both the trade and investment dimension. Therefore, I think it's a good partnership.
1: India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global

0: rangi business un lasket tangmifia lenchik akashwani rox yanti chonglenun local in ya faili thorikain akashwani stanchain customer un sapilepis caps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242।
3: मीडिया में वो दोनों एफएम चैनल का अच्छा साकाश वाणी करगिल ना जरिंचुत कस्ता तो सूत्रों में तस्वीर पर सामान्य स्तुत करेगा इंतज़ाम मसद
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

0: खान्छन् या 45 जस्तै हुन। तो यी चोक्से चल्ला गुणगता डाइट न निनदन तिनीता यी रुस्पे स्क्यो न्यून योङ चाहिँ चान्सेन छिक्स्क्यो तारले यु सङ्गता खर्जी पाट भयो निष्पा चलक पङ्गता यु दुङ्गता पोस्चर भयो म्याडमले न पोस्चर जेन कजुक श्याङताङ दुगत लाङसाद डुलत लस्यत त्यही छङमे इम्प्याक्ट भयो नताय स्केपा जिङ्बा नङ पुक्समेकाछहरू नतङ कजुक बुट गोनत निरा पोमोने नङ यु थुङ म्याडम नतै सोसाइटी न हिल्स बेलिज चप्पल स्यान्डल्स गोन्दुक याले त्यही भए जस्तै नताय कम्पा वो चिर्ते बोर्दुक एङ्कल नङ निज न हिप नङ ब्याकिक स्ट्रेन फोक्दुकले त्यही भिका नता यी चलाउ हुन् स्केपा पुक्समोनलाई नोद्दुक पोस्चर बोजेना नताय स्केपा वोल देमो चुस्ते नताय माबोर न त्यही विका मा मङपोक जसे नताङ अफिसलाई दुक्काने म्युजिक डो काउ घन्टा टुक जग्गा चिका कुर्सी न माङ खेरिक द्वार त्यही भए जस्तै रुस्पे न कमजोरी हुँदुक स्केपा नङपुक्स म जुमो हुँदुक स्कदाले नति लाइफ स्टाइल बोजेना नताय मिचे वो सिडेन्ट्री लाइफ स्टाइल जेन अङ्ग्रेजी न का मी वो एक्टिव मेत का मी वे एक्सरसाइज चो अमेत वॉक चो अमेत रनिंग चो अमेत साइक्लिंग चो अमेत कोने रुस्पाओ कमजोर छारुक मसल कमजोर छारुक तेने जॉइंट सुन ला पेन यों दुक शिक्योत्पा संगना ई चालक उन खकचान दुक यंग दक दिरिया सोमा चालक जिबिंग ते दुक मैडम ना मोबाइल फोन ई मोबाइल फोन बे जस्ते नता निरा उनले जिक्स तोड्रो नता ना मोबाइल फोन शुला छिन नता जिंगबा हो योगा सों तेल तागोस दुक ते जिंगबा योग अल्तास्ते नंग मोबाइल घंटा ही सुन जिलता अचिन जिंगबा वो पोस्चर भेजास्ते मैडम मैडम लेना नता जिंगबे ना मंटे जुमो यों दुख ते वाए अंग्रेजी टर्म जिग दुख टेक्स नेक सिंड्रोम जिरते ये चलक संगमा नता डॉक्टर ला थुकते फिजियोथेरेपिस्ट ला थुकते नता यू ना लाइफ ना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है ना मिचे ना गिरजा खेसते ये चला कौन रेक्टिफाई चुगे नो ये चला कौन नता है गिरजा खेसते चेंज चुगे नो यंग ई चलक उन टाइमली अगर नता है यू वक्त का सही वक्त का नता है इवे ना बदलाव छो ना तेने यू ई संग चुप्पो छे संगल ला नता है यू चलक उन गाक ज्ञान नो मैडम
1: तेने सर नता दक सन यंग देनत की चुमिन सुनसेन क्यू के जरे जरे नो सर दे क्यूक्टस पुचेन मतलब क्यूक्टस पु रुस्पे ना या ते से सन मसल सेन
0: मैडम ले ई वो नता है तस्ते माने जरगन छे मान यू रुस्पे जुमो योत ना नता साइन रियोंग चेन काना नता क्लिनिकली नता एसेस छ दियाले मसल पेन बोंगेरा रुस्पे गेन बिकायों चेन जुमो वो का वो यूजुअली नता मा मंगपो लस खेमिक चोस्ते नतांग जिंगला शॉडो मंगपो डुलाडो जैसे ठुई ग्यांस पर सेस्ते योंस ते बिना मंग छेतपो मसल पेन छाचेस पे आजुपो प्रोबेबिलिटी वो मारी हों चेन याले रुस्पे शक्योन बो सुजिया फोकते डो सुजी गेल ते डो सुजिया दुंस ते डो सुजिया एक्सीडेंट सों ते डो या सुजिया इन्फेक्शन सों ते डो या ट्यूमर सों ते डो ते बिना तेने रुस्पेश क्यों नहीं होंगे मैडम लेना या तो मंग छेत पो ई चालक पो डिफरेंशिएट चुचेस पो पेशेंट है हिस्ट्री पेशेंट है कौक्षा जर दुख कोई मुलजो हिसाब कने पे डॉक्टर जी आइडेंटिफाई अजुक चुंग नाथ कि ई वो चीज हस्ते इन दुख जरते अच्छा यंग चालक खाकचान जी का यू छोर मैडम गाता है ओपीडी ना गाया यू थो मी छिमी रिंघा लाले लो दुंजू छा कन ले ग्याचू छा कन रे चिकपुश कर दुख राय अजुई फे इलाज फे ये म्यून ला रिक्वेस्ट इन जुआगिन मेहरबानी निरा मी छी मी जी काउन गास तो डो चिकपो माने काला मजा ते ना चोकला टू छून उन काउन लो चोक या दे साउंड छून इन को ना चिकपो यों दु मैडम ला लो लो टुक रुदुन छा कने टू अंग अस्पताल ला चिकपोश कर दु कोन चिकपो माने काला मजा न्यामपो हमेशा म्यूजिक अटेंडेंट जी यहाँ पोस्ट करते हैं जरूरी दुख मी खाची गुनला छोरा मेरो गया ले तेने नया उनला खून यहाँ पो कम्युनिकेट चोचे पर मैं कक्ष पो चारु हॉस्पिटल ला यू फेयर अटेंडेंट यहाँ चेस जरूरी दुख चिक ते वो नंग मेहरबानी अगर अटेंडेंट वो सबक सिलते हो ना नए फेयर ते वो मैं फंतोक्स जान चारु कोआ चला गुन हा गो चुका ला मशंटे नया लमो चारु मैडम का मी सबक सिलते हो डो ते मी वा नता हा गो ताला लमो चारु ले
1: Darisa Pantis, Tiswigan Yan in Utpin, then at this way, Modi Kurtan's boat, Hamatun. Young Kurtan Sakpanga is in Chesterbos, Yashukodana Sakmani Fagrian Kodaha face.
2: Darintis, Urdeluxi program Pala Yan in Chetpin, program a certain campaign min Zahra Anjum, Yanti, programming producer pin min Gulzar Hussein. Mirim ayı dönüp hem canalı kadıvakaş vani kargilin vaxt budarı tuz soturdun sonsuk kasta.

0: rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rox yanti chonglenun local in ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyanchain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना।
1: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: ایلومس بنی نوح انسانی رخص بچائیں حضرت علی مرتضی علیہ السلام۔

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं शबीरुज़्ज़मां। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का आगाज, 4,800 यात्रियों का पहला काफिला वादी वारिद। भारत और जापान के दरमियान कई शोबों में मफाहमत नामों पर दस्तखत। इक्तिसादियात और तवानाई के शोबों में शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक। मजबूत तालीमी इदारे, खुशहाल समाज के जामिन। जम्मू में महकमा स्कूली तालीम के एक सलाहियत साजी प्रोग्राम से लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब। और वजीर आला ने शुपया जिले के तरक्याती मंजरनामे का लिया जायजा, 74 करोड़ रूपये मालियत के तरक्याती प्रोजेक्ट अवाम के नाम वक्फ। अब पेश है खबरों की तफसील। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का बाजाबता आगाज कल से हो रहा है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां और इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। यात्रियों का पहला काफिला वादी पहुंच गया है, जिसमें 3,707 मर्द और 816 खवातीन शामिल हैं। यात्रियों के पहले काफिले को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से वादी के लिए रवाना करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस, मकामी लोगों और दीगर मुतलकीन ने यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हैं। यात्रियों का यह काफिला जब नवयुग टनल क्रॉस करके काजीगुंड के रास्ते वादी पहुंच गया, तो नवयुग टनल पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उन्हें मशरूबात और खाने पीने की चीजें पेश की। एक रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे।
1: खुशगवार मौसम के बीच 4,800 यात्रियों को गेटवे ऑफ कश्मीर काजीगुड में पुलिस, सिविल इंतजामिया, मुकामी शहरियों, ताजर अंजुमनों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर यात्रियों पर फूल निछावर किए गए और इनके खैर मकदम के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे। यात्रियों ने हुकूमत, इंतजामिया और मुकामी लोगों की जानिब से किए गए बेहतरीन इंतजाम और खुलूस इस्तकबाल पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। पिछले साल 4,15,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे, जबकि इस साल अब तक 3,60,000 से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन की है। यात्रियों की सहूलियत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल बेहतर इंतजाम किए हैं, ताकि यात्रा पुरअमन और खुश असलूबी से मुकम्मल हो सके। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए नवयुग टनल काजीगुंड से खुर्शीद पडरू।
0: इस्तकबाल के लिए पहुंचे कई लोगों ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
2: मेरा नाम फहाद है। हम बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। सुबह से उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कश्मीरियों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो हमेशा एक खूबसूरत रही है। हमने हमेशा हर किसी को, जो भी कश्मीर आया है, उनको तहे दिल से उनका स्वागत किया है।
3: मेरा नाम है किरण वेली। हम सुबह से बैठे हैं, जो अमरनाथ यात्रा हर साल की तरह यहाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं।
4: बहुत खुशी की बात है कि श्री अमरनाथ यात्रा जी जो है, हम कश्मीर में यहाँ सारे हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर टनल पे उनका वेलकम कर रहा है, जो कि गेटवे ऑफ कश्मीर है।
0: इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजादा आलम, डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मुत्तू, एसएसपी कुलगाम इनायत अली चौधरी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज पुरानी मंडी जम्मू में वाका कदीम श्री राम मंदिर में हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली और तरक्की के लिए प्रार्थना की। उन्होंने साधुओं को श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज की मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब सनाई तकाईची के साथ भारत जापान सालाना इजलास के दौरान बाहमी मफाद के कई मामलों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक ने दवा साजी, मसनू जहानत, इकतसादियात और तवानाई के शोबों में शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मफाहमत नामे तय किए। बाद में जापान की वजीर आजम के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि असर हाजिर में एतमाद और भरोसा किसी भी कौम का सबसे बड़ा असासा है।
5: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसिशन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक

0: विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि बाइख्तियार उस्ताद एक तालिब इल्म को पूरा एतमाद बना सकता है और मजबूत तालीमी इदारे खुशहाल समाज की तश्कील में अहम रोल अदा करते हैं। इन बातों का इजहार एलजी ने स्कूली तालीम महकमा SCERT और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के मुश्तरक एहतमाम से जम्मू में मुनक्कदा एक रोजा सलाहियत साजी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम का मकसद इर्तिकाई अमल को फरोग देना है।
2: यदि टीचर्स इम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे। यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्ज्वल सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है।
1: इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई जहीन तालिब इल्मों में इनामात तकसीम किए जबकि कई किताबों की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट वैन को झंडी दिखाई। ये गाड़ी HDFC बैंक ने कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी मुहिम के तहत फराहम की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बैंक के इस कदम की सराहना की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर जिले की यकसान तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने आज जनूबी कश्मीर के शुपया जिले का दौरा करके वहां मजमुई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने जिले के बाग मालिकान और किसानों को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया। शुपया से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट।
3: जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला शोपियान के अपने दौरे के दौरान DCIS कॉम्प्लेक्स में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और फलाई स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर आला ने तकरीबन 76,45,21,000 रूपये की मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने कहा,
4: जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं ऑनरेबल MLA जैनपुरा, ऑनरेबल MLA शोपियां, इन दोनों से हम सुनना चाहते थे कि कहाँ पे खामियां हैं और क्या कुछ दुरुस्त करना बाकी है। यहाँ जो अफसरों की टीम है एक अच्छी टीम है, DC साहब इनकी लगातार कोशिश है कि जिले में जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए।
3: बाद में वजीर आला ने मेगा फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी अगलर का दौरा किया। उन्होंने ट्रेडर्स फेडरेशन सिविल सोसाइटी के अरकान और स्ट्रीट वेंडर्स के नुमाइंदगान से भी मुलाकात की। आकाशवाणी शोबा खबर श्रीनगर के लिए शोपियान से मैं जानिसार अहमद।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज श्रीनगर में सीरबाग सेमपुरा पुल पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने अमलावरी एजेंसी को ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि मकामी लोगों का मसला हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पुल से सीरबाग सेमपुरा सुमरबुग के अलावा पांपोर चाडूरा और श्रीनगर के मुलिका इलाकों में रहने वाले लोगों को अबूर मरूर की सहूलत दस्तियाब रहेगी। ज़िराअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि जमीनी सतह पर काम करने वाले अफसरान और अहलकार सरकार के मंसूबों को अमली शक्ल देने में अहम रोल अदा करते हैं। शुपया में विकसित भारत जी राम जी का रस्मी तौर आगाज करने के लिए मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी भलाई प्रोग्राम की कामयाबी का दारो मदार अमलावरी एजेंसी या महकमे की लगन और तनदही पर होता है। तकरीब में दी तरक्की महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद के अलावा दीगर कई अफसरान ने भी शिरकत की। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे को फरोग देने की गर्ज से वजीर आजम फंड के तहत यूटी के लिए मसनूई जहानत पर मबनी 275 पोर्टेबल एक्सरे मशीनें, 9 MRI इकाइयां और 4 डिजिटल मेमोग्राफी यूनिट्स के लिए रकूमात वागुजार किए हैं। इस ताल्लुक से सेहत की मरकजी वजारत और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। ये तशखीसी आलात मुंतखब शुदा सरकारी तिब्बी इदारों में नस्ब किए जाएंगे। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथिर ने आज चराज शरीफ के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लेप्रोस्कोपी और डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह करके उन्हें अवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि इन तशखीसी सहूलियात की फराहमी से चराज शरीफ के लोगों की देरीना मांग पूरी हो गई है। अब्दुलरहीम राथिर ने तिबी निगहदाश्त के शोबे में मजीद बेहतरी लाने के सरकार के अजम का इआदा किया। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तालीमी मंजरनामे को मजीद फाल बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। श्रीनगर में आज प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के एक वफद से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस शोबे की खामियों को दूर करने के लिए मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। सकीना इत्तू ने वफद के मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर में माहौलियात को तहफ़ फराहम करने की गर्ज से जारी मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ सईद दरख्शां अंद्राबी की सरबराही में आज जम्मू के ईदगाह इलाके में शजरकारी की एक मुहिम का आगाज हुआ। इस मौके पर एक पौधा लगाने के बाद डॉ अंद्राबी ने कहा कि माहौलियात को

जय हिंद। फिल्मी नामों पर मबनी फौजी भाइयों के प्रोग्राम लेकर इस वक्त आकाशवाणी करगिल से हम हाजिर खदमत है। प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को हमारे ओर से खुलूस भरा आदाब। और आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं दोस्तों। आज के इस प्रोग्राम में अब चंद पुराने तर्ज के फिल्मी नगमे समाप्त करेंगे।

दोस्तों, अभी प्रोग्राम के आगाज़ में आपने महल फिल्म से नगमा सुना। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर। ये नगमा लिखा था जे नक्शाप ने और मौसीकी तरतीब दी थी खेमचंद प्रकाश ने। और आइए अब समाप्त करें आशा भोसले की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम है वक्त। ये नगमा लिखा है साहिर ने और मौसीकी तरतीब दी है रवि ने।

दोस्तों, यह प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ताजमहल फिल्म से नगमा मिली जुली आवाजें हैं मन्ना डे, मीना कपूर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। ये नगमा कलमबंद किया है साहिर ने और मौसीकी तरतीब दी है रोशन ने।

0: फौजी भाई अपना मनपसंद प्रोग्राम इस वक्त आकाशवाणी करगिल से समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों आपके प्रोग्राम रोजाना शब ठीक 8 बजे आकाशवाणी करगिल से नशर होता है, सुनना न भूलिएगा।
1: कब तक लंबी कतारों में उम्र गुजारिएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, ये देखिए चुटकी पे पेमेंट कीजिए। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कहीं भी कभी भी और महफूज भी। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने आगे यह कहता है कि
2: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
3: औरों को भी सिखाओ।
4: नई वॉशिंग मशीन।
1: अच्छा है।
5: यस। क्या हुआ?
4: अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है।
1: अच्छी धुलाई होगी,
4: है ना?
1: बैंक अकाउंट की। पैसे लेते वक्त QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं होती, उनके सिर्फ पेमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए नामालूम कोड या लिंक से चौकन्ने रहिए और नुकसान से बचिए।
4: बच गए धुलाई से।
1: ये नई धुलाई। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
5: पुलिस?
7: मिस सीमा
5: जी,
7: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
5: क्यों? लेकिन मैं
7: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
5: डिजिटल अरेस्ट?
7: 1 लाख दो, बन जाओगे।
5: इतने पैसे?
7: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
8: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए डर खौफ ना करें। पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम पर आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें पैसे ना भेजें, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें।
9: हेलो मम्मा।
5: हाय।
10: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वक्फे के बाद फौजी भाइयों को फिर से अपने प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं। दोस्तों आप सुनते रहिए प्रोग्राम आकाशवाणी करगिल।

तो प्रोग्राम की अगली नजर आराधना फिल्म से नगमा मिली जुली आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। ये नगमा लिखा है आनंद बख्शी ने और मौसीकी तरतीब दी है एस डी बर्मन ने।

फौजी भाई, यो प्रोग्राम का अगला गीत आइए समाप्त करें। 9 2 11 फिल्म से नगमा, गायक कलाकार है किशोर कुमार।

फौजी भाइयों, प्रोग्राम की आखिरी नज़र लीजिए, समाप्त करें फिल्म यादों की बारात से ये नगमा। मिली जुली आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

दोस्तों, इसी नगमे के साथ ही फौजी भाइयों के लिए हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी अख्तितम को पहुंचा। इस बीच हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। दोस्तों, आप जहां भी रहे हमेशा खुश रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए। हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब हैं। सामिन, अभी खबरों का वक्त हुआ चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू खबरनामा रिले करेंगे।
1: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने।

0: अरब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शास्त्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी

0: यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के माबैन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उनसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सार्फिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैन अलावामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राब्ता कायम करके खतरे से 2-4 मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैन अलाक़वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारिफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैन अलाक़वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जांच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मसनू जहानत अब सिर्फ एक मुतबादल नहीं रह गई है बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज से पहले जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाके नुनवान और जिला गांधरबल के बालतल बेस कैंप से कैंप पहुंच गया है। जम्मू से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए इस 57 रोजा यात्रा को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का बाजाब्ता आगाज कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अलग सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें

0: 2510 यात्री पहलगाम जबकि 2312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुंचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के एहसन इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकामात पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट्स पर सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए आरएफआईडी ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, वस्ती महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। आईएमडी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडिया में उदन एफएम चैनल का अच्छा साकाश वाणी करगिल ना जरिंचुत वक्स पदरित हनी तो सो दुर्गुन एफएम सोंसु कस्ता समस्त तरग इंतसियन मजा सख बजक्सनल इंतसियन मजा दा खून मोहम्मद बाकर जीशानी कनर समस्त थे किया बिस्मिल्लाह
3: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम

حضرت عیسیٰ تھونے سے کھا سد سرعت